दुर्गा माँ, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर, चंद्रानी मुखर्जी और साथियों की आवाजों में। रविन्द्र जैन ने इसे लिखा था और उन्हीं का संगीत। रंग तरंग में ये अगली पेशकश जॉगर्स पार्क फिल्म से, जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती से प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में मुकद्दर का सिकंदर से ये गीत। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा।

0: गजब था।
1: हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अ वेडनेसडे फिल्म से। इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो

आशा भोसले भूपेंद्र की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों से छूलू तुम, मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदिवर ने इसे लिखा था।

आपकी कसम इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी ने इसे लिखा था आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: ये है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफी सारे शब्द, काफी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी

हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है, तुम पास हो या ना हो मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है, तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात, एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है, वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है, सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में, ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हां, आप सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और इसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहां प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कंपकपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की तीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं हैं, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूं। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं। फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या, और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आजाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं।

अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूं और किस्से कहानियां पढ़ती हूं, और गर्मियों के दिन काफी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं, ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं उनके लिए वो ही ठंडक देती है, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफी लंबा मैसेजेस और काफी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली, तो जरूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहां आप तक पहुंचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे। चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज्यादा जरूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूं क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसी उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है। प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है। बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं। सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें, जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूंगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, इस चीज को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नजर आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर। जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम, तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो जरूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहां पे प्ले करती हूं उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में दो से तीन अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन है, ये जरूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मजा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आंखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आंखों में देखकर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आंखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री है, मुझे बताएं। चलिए चलते हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज है। त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में खयाम का संगीत था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूंगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूजिक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिखकर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं। और विविध भारती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूं मैं अक्सर। वहां चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियां साए साए करती है, वो आवाज सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे। और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है मुझे बताएं।

रात कली एक ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुड्ढा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर यह फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफर, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ। और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए।

0: ही सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है। और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस करते हैं। और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं भाई अभी
1: अरे
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाली है।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के राशन पानी लाना वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: नागनी मैम, देखिये क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके घर
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अभी हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं।
2: बिल्कुल।
1: हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है,
2: आनंद भी आता है। और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना
1: तब
2: भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो फिर ये सुनने को
1: ही अधूरापन मिलेगा, व्यवस्था मिलेगी।
2: कहने का मतलब खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शार्प क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजें।
1: हाँ, लिखे ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते ही हैं।
2: आप बता सकते हैं कि फलाना भी कान का कच्चा है।
1: हाँ, ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है हमारे अपने घर में। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली, तो आप कान की कच्ची हो इसका मतलब।
2: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए, जिसमें आपको भी मजा आए, हंसी आए और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए, तेरा खत लेके सदम, तो ये कहना चाहिए हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना चाहता है तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
0: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
1: आत्मसुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है, छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं। जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
0: हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग। पानी चलता रहता है नलों से लगातार, आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर, दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखें, ईमानदारी अपना ना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है। यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने करने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
1: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
0: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: इस अंतराल के बाद सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है।
1: और देखिए एक संदेश है मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती है वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते हैं पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
0: बिल्कुल
1: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूमते हैं,
1: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं। हाँ। मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा।
0: हाँ।
1: तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे भी मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं। हमें चाहिए,
0: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने
1: बिल्कुल
0: लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों, अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुते रे, तो जे आच रही तेनर न घनेरे।
1: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना वंदाकिनी जी?
1: बिल्कुल.
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है.
1: बिल्कुल है
0: ना?
1: है.
0: तो ये सफल, आप हंस रहे ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात. है ना?
1: और तो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा करें तो भी कम पड़ जाती है.
0: जी,
1: जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है.
0: बिल्कुल. चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं. हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल. राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाते हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है. उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है. और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉप क्लूज की सह संस्थापक है. वर्तमान में ये कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी. और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ. उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गईं.
1: बिल्कुल. उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से एमबीए की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया.
0: जी. और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया. उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया. इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं.
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ शॉप क्लूज की स्थापना की और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था. लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था. शॉप क्लूज ने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया.
0: जी. और कंपनी की खासियत यह थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया. यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे. धीरे धीरे शॉप क्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई. कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा.

0: एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
1: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी, उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था, लेकिन हाँ उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
0: बिल्कुल, और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ न कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में। वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
1: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है
0: नहीं, कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे की उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते
1: हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चे होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए, वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी, तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने, है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों की हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप, अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी

0: बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई भी जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी इस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
1: बिल्कुल पड़ता है।
0: सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूं मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं उसकी बातों में डिगा नहीं सकते, जिसे कहते हैं
1: मतलब अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
0: थाली का बैंगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
1: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
0: बिल्कुल
1: कुछ नहीं रहा। तो आपके जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
0: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता की कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते हैं, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए।
1: मतलब
0: ऐसे लोग
1: जो बातों की होती है दोस्तों के बीच में उसको भी वो हटा देते हैं।
0: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
1: वहीं एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलत फहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
0: जी सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
1: वाह

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बाराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल, और ये एक रोचक बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में,
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: छुटपुट मजाक होती है।
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस है, इसमें तो 6 पीस है, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह की भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को करना पड़ता
1: थे। हाँ, बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गांव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गांव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जनवासी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से व्यवस्था
0: मन से करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: मनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी, जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधू

0: पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधू पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बारातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता है, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, थोड़ा मजा आता था, लेकिन वो गाने बहुत अच्छे थे।
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासी में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं। जनवासी का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय न मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासी का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था। ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था, जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे, जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माशा ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है, या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है, लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से, जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माशा वो स्थान है जहां पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माशा भी देखा जाता था कि कितनी पास है, कितनी दूर है, और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना, हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूड़ी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत
1: चूहलबाजी
0: टाइप की भी होती थी, तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है।
1: हाँ,
0: तो
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई।
0: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: शादी होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई है।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासे में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासे में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जो भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी, तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। हाँ। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहां बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गांव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक मजा था।
0: वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा यह जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गांव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, हाँ। तो वो तो किसी और का बगीचा है। हाँ, हाँ। अब आम लगे हैं, हाँ। अब बाराती लगे तोड़ने में, हाँ। अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बारातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा रहे। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं और अब हम सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
1: जी।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: शबू महक रही है सांसों की रागनी में, कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे आज फिर से ताजा हो गए
0: ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।